0: गांव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है, उससे मैंने गेहूं में, चावल में, इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है।
1: द नमो ड्रोन दीदी स्कीम इज दस नॉट ओनली प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर बट ऑल्सो हेल्पिंग रूरल वीमन एक्वायर न्यू स्किल्स, टेक ऑन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ लाइवलीहुड एंड इनकम। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी न्यूज, जयपुर।
2: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज़।

0: रहे हो विविध भारती एफएम 101.3।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर।

0: among those benefiting the most from the formation of the Ministry of Cooperation. Details from our correspondent.
1: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah announced 101 crore rupees for cow shelters at the Sammelan, attended by around 35,000 gopalaks from 11 districts. He also virtually performed the foundation stone ceremony for a dairy plant to be built in Ujjain at a cost of 255 crore rupees. He said that a central laboratory has been set up in Bhopal at a cost of 12 crore rupees and a mini dairy plant will be built in Shivpuri. Before the Gopalak Sammelan, the Union Minister also inaugurated an exhibition by the Madhya Pradesh Police on the new criminal laws at the Bhel Dashara Maidan. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
2: The Gothenburg में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर